0: मिङ्गा कासना नल्ली वसिन तिरिस पा समूह बने का नचा रिगुस पा लिखा हुआ गिमंग
1: अरे अरे चैता से तनिंगा पा समूह यानी हम अपन नहीं चैता का नियम पसे कचम से जों छम बिशुन जे मर जे ऑफिशियल लिखे रोयल चिंबे तब वाकु चिल का कुन मा कुछ तो नहीं चंग की कंसे थे
0: निका बा कहीं बिजनेस तो मरे ताई तमाई तो
1: या सिंदा कचारिशुन रस्ता कुनान से रस्ता